द्वारा इस प्रोग्राम में प्रांजलि का सभी प्यारे श्रोताओं को सुरीला प्रणाम। गीतों की माला पहनाने आता है ये प्रोग्राम जिसका नाम है दिल ने पुकारा। दोस्तों, आज के प्रोग्राम में सुनेंगे कुछ ऐसे नगमे जिनके मुखड़े हैं फिल्मों के नाम। जी हाँ दोस्तों, ये मुखड़े फिल्मों की पहचान बने हैं। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि जब निर्माता निर्देशक फिल्म बनाने की सोच रखते हैं तो सबसे पहले उनके दिमाग में फिल्म का शीर्षक क्या होगा ये बात आती होगी। शायद कुछ कहानियों के शीर्षक लेखकों द्वारा मिल ही जाते होंगे, पर जो नहीं मिलते उनका नाम क्या रखे। दोस्तों, नाम में ही तो सब कुछ रखा है। नाम ही पहचान है, आन है, बान है, शान है।

दोस्तों, फिल्म के मुखड़े से आपने पहचान ही लिया होगा कि फिल्म का नाम था एक बार मुस्कुरा दो। ये गीत गाया था आशा भोसले और किशोर कुमार ने, लिखा था शेवान रिजवी ने और संगीत से सजाया था ओपिन अय्यर ने। तो इस फिल्म की कहानी भी शायद कुछ दुख दर्द वाली होगी, इसलिए तो फिल्म का नायक ये बार बार कहता होगा एक बार मुस्कुरा दो, मतलब मेरी सोच ऐसी है। अब आप क्या कहते हैं, चलिए कुछ कहना है तो जरूर मेरा नंबर नोट कर लीजिएगा 9657001835। तो आइए सुनते हैं दूसरा गीत जो गाया है मोहम्मद रफी ने, संगीत से सजाया है शंकर जयकिशन ने, लिखा है हसरत जयपुरी ने, और फिल्म का नाम तो अब हम सुनेंगे ही इस गीत के जरिए।

दामन भर लो, मर जाओगे प्यार कर लो। कल का सपना किसने देखा, इन राहों से आलो। अपने दिल का दामन भर लो, मर जाओगे प्यार कर लो। कल का सपना किसने देखा, इन राहों से आज गुजर लो। ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा, हमारे जैसा दिल कहाँ मिलेगा।

ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा, हमारे जैसा दिल कहाँ मिलेगा। आओ तुमको दिखलाता हूँ

दोस्तों, दिल ने पुकारा में अभी अपने प्यारा सा गीत सुना, जिसके नाम से समझा जाता है कि इस फिल्म में पेरिस शहर की प्यारी सी शाम देखने मिलेगी। सचमुच बड़ी सुंदर है ये फिल्म। 3 घंटे बैठकर हम पेरिस की सैर करके आते हैं, साथ में हीरो हीरोइन की कहानी के भी मजे लेते हैं। बड़े बड़े शहरों की बड़ी बड़ी कहानियां और वो बड़े बड़े हीरो हीरोइन, आंखें चैन पाती है ये फिल्में देखकर। क्यों दोस्तों, आपकी राय भी जरूर बताइएगा।

दिल ने पुकारा में अभी आपने सुना फिल्म ये रास्ते हैं प्यार के का गीत। गाया था आशा भोसले ने, लिखा था राजेंद्र कृष्ण ने, सुरों में पिरोया था रवि ने। इस बेहतरीन गीत ने सचमुच समा बना दिया है। प्यार की कहानी सफल हो जाए तो जिंदगी का सफर सुहाना बन जाता है, पर ये कहानी अगर अधूरी रहे तो न पूछो। इसलिए इन प्यार के रास्तों पर संभल के चलना चाहिए। यह तो बात है फिल्म दोस्तों। ऐसा बताया जाता है कि फिल्में जिंदगी का समाज का आईना होती है। ये बात तो सच है। कुछ कहानियां जरूर मनगढ़ंत होंगी, पर जो समाज में होता है हुआ है वही तो दिखाती है ये फिल्में। थोड़ा बहुत 19-20 तो हो ही सकता है, आज जरूर होना चाहिए।

दिल का पर बोल दो, अरे ओ दिल का पर्दा खोल दो। जब प्यार किसी से होता है तो दर्द सा दिल में होता है। तुम एक हसीन हो लाखों में, भोला पाके तुम्हें कोई खोता है। जिया ओ जिया ओ जिया कुछ बोल।

तो इस आग में जलते हो, मेरे से बयां हो जाता है। हर बात पे आहें भरते हो, हर बात पे दिल भर आता है। जब दिल पे चुड़ियां चलती है, तब चैन से कोई सोता है। जिया ओ जिया, जिया कुछ बोल दो। अरे ओ

0: जियो जियो कुछ बोल दो, अरे ओ दिल का पर्दा खोल दो। जब प्यार किसी से होता है वो दर्द सा दिल में होता है, तुम एक हसीन हो लाखों में, मल पाके तुम्हें कोई खोता है। ओ जियो जियो जियो कुछ बोल दो।
1: दोस्तों जब प्यार किसी से होता है, इस फिल्म से आपने गाना सुना। चुलबुली आशा पारेख देवानंद पर फिल्माया गया ये गीत गाया था मोहम्मद रफी ने, गीतकार थे हसरत जयपुरी और संगीतकार थे शंकर जयकिशन। तो हर फिल्म में हीरो हीरोइन तो होने ही चाहिए, जिनके बगैर फिल्में नहीं होती। पर हाँ, कुछ फिल्में सत्य घटना पर आधारित भी होती है, उसमें भी प्यार की कहानियां घुसेड़ दी जाती हैं। क्योंकि दोस्तों प्यार एक पूजा है, दिल एक मंदिर है, और दिल से तो जिंदगी की शुरुआत है। तो बहुत सारी फिल्मों के नाम क्यों न शुरू हो इसी शब्द से। देखिए दिल एक मंदिर, दिल अपना और प्रीत पराई, दिल दिया दर्द लिया, दिल ने फिर याद किया। तो चलिए इसी में से एक फिल्म का शीर्षक गीत सुनते हैं। गाया है मोहम्मद रफी ने, लिखा है शकील बदायूनी ने, संगीतकार है नौशाद।

0: दृष्टि को सहारे पे तेरे छोड़ दिया।
1: तो दोस्तों ऐसे ही सुनहरे नगमे सुनते रहेंगे और सुनते रहेंगे, सुनाते रहेंगे और फिर से मिलेंगे। नमस्कार।

0: गली खोली नंबर 420।
1: एक्सक्यूज मी प्लीज,
0: माय नेम इज एंथनी गोंसाल्विस। राइट, मैं दुनिया पे अकेला हूँ।
2: यू सी द कोएफिशिएंट ऑफ द लिनिया इज जक्सटापोजिशन्ड बाय द हेमोग्लोबिन ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन द कंट्री।

0: गली खोली नंबर 420।
1: एक्सक्यूज मी प्लीज, माय नेम इज फ्रैंकी।
2: नो
1: नो। सेबेस्टियन?
2: नो।
1: गोल्डी? सोल्डी?
2: नो। एंथनी गोंसाल्विस।
0: ओह यस।

द्वारा इस प्रोग्राम में प्रांजलि का सभी प्यारे श्रोताओं को सुरीला प्रणाम। गीतों की माला पहनाने आता है ये प्रोग्राम जिसका नाम है दिल ने पुकारा। दोस्तों, आज के प्रोग्राम में सुनेंगे कुछ ऐसे नगमे जिनके मुखड़े हैं फिल्मों के नाम। जी हाँ दोस्तों, ये मुखड़े फिल्मों की पहचान बने हैं। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि जब निर्माता निर्देशक फिल्म बनाने की सोच रखते हैं तो सबसे पहले उनके दिमाग में फिल्म का शीर्षक क्या होगा ये बात आती होगी। शायद कुछ कहानियों के शीर्षक लेखकों द्वारा मिल ही जाते होंगे, पर जो नहीं मिलते उनका नाम क्या रखे। दोस्तों, नाम में ही तो सब कुछ रखा है। नाम ही पहचान है, आन है, बान है, शान है।

दोस्तों, फिल्म के मुखड़े से आपने पहचान ही लिया होगा कि फिल्म का नाम था एक बार मुस्कुरा दो। ये गीत गाया था आशा भोसले और किशोर कुमार ने, लिखा था शेवान रिजवी ने और संगीत से सजाया था ओपी नैयर ने। तो इस फिल्म की कहानी भी शायद कुछ दुख दर्द वाली होगी, इसलिए तो फिल्म का नायक ये बार बार कहता होगा एक बार मुस्कुरा दो, मतलब मेरी सोच ऐसी है, अब आप क्या कहते हैं। चलिए, कुछ कहना है तो जरूर मेरा नंबर नोट कर लीजिएगा, 9657001835। तो आइए सुनते हैं दूसरा गीत जो गाया है मोहम्मद रफी ने, संगीत से सजाया है शंकर जयकिशन ने, लिखा है हसरत जयपुरी ने, और फिल्म का नाम तो अब हम सुनेंगे ही इस गीत के जरिए।

दामन भर लो, मर जाओगे प्यार कर लो। कल का सपना किसने देखा, इन राहों से आज गुजर लो। अपने दिल का दामन भर लो, मर जाओगे प्यार कर लो। कल का सपना किसने देखा, इन राहों से आज गुजर लो। ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा, हमारे जैसा दिल कहाँ मिलेगा।

ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा, हमारे जैसा दिल कहाँ मिलेगा, आओ तुमको दिखलाता।

दोस्तों, दिल ने पुकारा में अभी अपने प्यारा सा गीत सुना, जिसके नाम से समझा जाता है कि इस फिल्म में पेरिस शहर की प्यारी सी शाम देखने मिलेगी। सचमुच बड़ी सुंदर है ये फिल्म। 3 घंटे बैठकर हम पेरिस की सैर करके आते हैं, साथ में हीरो हीरोइन की कहानी के भी मजे लेते हैं। बड़े बड़े शहरों की बड़ी बड़ी कहानियां और वो बड़े बड़े हीरो हीरोइन, आंखें चैन पाती है ये फिल्में देखकर। क्यों दोस्तों, आपकी राय भी जरूर बताइएगा।

दिल्ली पुकारा में अभी आपने सुना फिल्म ये रास्ते हैं प्यार के का गीत, गाया था आशा भोसले ने, लिखा था राजेंद्र कृष्ण ने, सुरों में पिरोया था रवि ने। इस बेहतरीन गीत ने सचमुच समा बना दिया है। प्यार की कहानी सफल हो जाए तो जिंदगी का सफर सुहाना बन जाता है, पर यह कहानी अगर अधूरी रहे तो न पूछो। इसलिए इन प्यार के रास्तों पर संभल के चलना चाहिए, यह तो बात है और यही बताती है ये फिल्म। दोस्तों, ऐसा बताया जाता है कि फिल्में जिंदगी का समाज का आईना होती है। ये बात तो सच है, कुछ कहानियां जरूर मनगढ़ंत होंगी, पर जो समाज में होता है, हुआ है, वही तो दिखाती है ये फिल्में। थोड़ा बहुत 19-20 तो हो ही सकता है, पर फिल्मों में समाज का दर्शन जरूर होता है और होना चाहिए, ऐसी सोच तो है ही।

दिल का पर्दा खोल दो, जियाओ जियाओ जिया कुछ बोल दो, अरे ओ दिल का पर्दा खोल दो। जब प्यार किसी से होता है तो दर्द सा दिल में होता है, तुम एक हसीन हो लाखों में, मुलाकात के तुम्हें कोई खोता है, जियाओ जियाओ जिया कुछ बोल।

0: के साथ में चलते हो मेरे से बयां हो जाता है, हर बात पे आहे भरते हो, हर बात पे दिल भर जाता है। जब दिल पे चुड़िया चलती है तब चैन से कोई सोता है। जिया ओ जिया ओ जिया कुछ बोल दो, अरे ओ दिल के पन्ना खोल दो। जिया ओ जिया कुछ बोल दो, अरे ओ दिल का पर्दा खोल दो। जब प्यार किसी से होता है तो दर्द सा दिल में होता है, तुम एक हसीन हो लाखों में, बल पाके तुम्हें कोई खोता है। जिया ओ जिया कुछ बोल दो।
1: दोस्तों जब प्यार किसी से होता है, इस फिल्म से आपने गाना सुना चुलबुली आशा पारेख देवानंद पर फिल्माया गया ये गीत गाया था मोहम्मद रफी ने, गीतकार थे हसरत जयपुरी और संगीतकार थे शंकर जयकिशन। तो हर फिल्म में हीरो हीरोइन तो होने ही चाहिए, जिनके बगैर फिल्में नहीं होती। पर हाँ, कुछ फिल्में सत्य घटना पर आधारित भी होती है, उसमें भी प्यार की कहानियां घुसेड़ दी जाती हैं। क्योंकि दोस्तों प्यार एक पूजा है, दिल एक मंदिर है, और दिल से तो जिंदगी की शुरुआत है। तो बहुत सारी फिल्मों के नाम क्यों न शुरू हो इसी शब्द से। देखिए दिल एक मंदिर, दिल अपना और प्रीत पराई, दिल दिया दर्द लिया, दिल ने फिर याद किया। तो चलिए इसी में से एक फिल्म का शीर्षक गीत सुनते हैं। गाया है मोहम्मद रफी ने, लिखा है शकील बदायूनी ने, संगीतकार है नौशाद।

तो दोस्तों, ऐसे ही सुनहरे नगमे सुनते रहेंगे और सुनते रहेंगे, सुनाते रहेंगे और फिर से मिलेंगे। नमस्कार।

में किसके वास्ते हूँ मैं, न जाने इनमें कौन है मेरे लिए। जवानियाँ ये मस्त मस्त बिन पिए जलाती चल रही है राह में दिए, न जाने।

किसे किसे पुकारिए, किसे किसे पुकारिए, जवानी आए मस्त मस्त बिन पिए, जलाती चल रही है राह में दिए, न जाने इनमें किसके